0: सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
2: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
3: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमी कंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
4: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
5: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
6: मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
7: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटी की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी।

0: जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी राम मंदिर था निशाने पर। भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटिबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे। ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: रेगजनांगचुकतांग टबागुने सलखने लुगुन सनखल नंगेसला आकाशवाणी लेने संचेसला फुलन चिकतांग इन।

0: अजय आकाशवाणी लेने जुन चिकता इन
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

फिल्म लुई डिग्री में नंगा कसता इस तिंग ने किशोर कुमार सलखने आराधना फिल्म लु संचेस लापुरिन आनंद बख्शीर सुमखने लुआ यंग श्रीखने नो एस डी बर्मन

0: 5 जुलाई इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन।
1: यार जल्दी से 500 रुपए ऑनलाइन भेज दे, अर्जेंट है।
2: यार मेरा डेटा पैक खत्म है, रुक मैं पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करके ऑनलाइन पे कर देता हूँ।
3: खबरदार, पब्लिक वाईफाई पर अपनी संवेदनशील जानकारी जैसे ऑनलाइन पेमेंट्स, बैंक अकाउंट लॉगिन, पासवर्ड्स बिल्कुल शेयर न करें और फाइनेंशियल फ्रॉड से बचें। जानकारी ही समझदारी है। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक।
4: प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई सारे मौजूदात, लेकिन शुरुआत करेंगे इदारिये से।
0: 3 ट्रिलियन यानी 3 लाख करोड़ यानी 3 के दाएं तरफ 12 जीरो, ये वो बिजनेस माइलस्टोन है जो आपके और हमारे हम सबके चहेते इदारे जम्मू कश्मीर बैंक ने गुज़श्ता दिनों उबूर कर लिया। ये एक तारीखी लम्हा जरूर है, लेकिन हमारी मंजिल नहीं, क्योंकि आपके साथ विश्वास और भरोसे से बना ये इदारा तरक्की की हर नई ऊंचाई को छूने का साहस रखता है जो इसकी उकाबी शान के ऐन मुताबिक है। 30 जून 2026 को जेके बैंक ने जो कारोबारी आदाद व शुमार स्टॉक एक्सचेंज के साथ शेयर किए, उनके मुताबिक हमारा मजमूई कारोबार लगभग 3,04,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जो हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में एक अहम संगे मील की हैसियत रखता है। 1938 में महाराजा हरि सिंह ने 5 लाख रुपए के इनिशियल कैपिटल से जिस बैंक की शुरुआत की थी, उसने साल 2013 में 75 साल के बाद 1 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस दर्ज किया। साल 2023 में लगभग 10 बरस के बाद 2 लाख करोड़ और 2026 में महज मजीद 3 साल में 3 लाख करोड़ रुपए का मजमूई कारोबारी हदफ उबूर किया। तरक्की की ये रफ्तार देखकर 5 लाख करोड़ रुपए के बिजनेस टारगेट का ताकुब काबिले हुसूल नजर आता है, जिसमें आपका साथ कलीदी हैसियत रखता है। बैंक के कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स में मुनक्कदा एक पुरवकार तकरीब में इस तारीखी कामयाबी को सेलिब्रेट किया गया, जहां बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चटर्जी ने तमाम खातादारान, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स का शुक्रिया अदा किया और मुबारकबादियां पेश की, जिस दौरान बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता, चीफ जनरल मैनेजर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर्स भी शामिल थे, जबकि डिविजनल हेड्स और जोनल हेड्स ने बजरिए वीडियो लिंक प्रोग्राम में शिरकत की। एमडी और सीईओ ने तमाम मौजूदा और सबका एम्प्लॉईज का भी शुक्रिया अदा किया, जिनकी मेहनत शायका से बैंक की अजमत को 4 चांद लगे हैं। उन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबारी हदफ उबूर करना हम सब के लिए फख्र की बात है और ये कामयाबी हम सब की मुश्तरका कामयाबी है। ये कामयाबी यहाँ के लोगों की है, क्योंकि जो जो बैंक तरक्की करता जाएगा, यहाँ की मईशत और इक्तसादियात में गरां कदर इजाफे का बाइस बनेगा। उन्होंने कहा कि अगले 4 साल में बैंक अपना मजमूई कारोबार 5 लाख करोड़ तक पहुंचाने का इरादा रखता है, जिसके लिए हम सबको मुसम्मम इरादों के साथ आगे बढ़ना है और सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। ये कामयाबी तब तक नामुकम्मल रहेगी जब तक कि ना इसका फल यहाँ के हर एक नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा आदाब में तवक्को से कम वक्त लगेगा और बैंक मुल्क की मालियाती उफक पर एक दर्शनदा सितारे की मानिंद चमकेगा।
5: ऑनलाइन लोन फ्रॉड से बचें। फ्रॉडुलेंट लोन ऐप्स और फेक कॉल्स आपको अपनी मालूमात शेयर करने पर मजबूर कर सकती हैं। अपने आप को और अपने पैसे महफूज रखें सिर्फ भरोसेमंद ऑथराइज्ड बैंक वेबसाइट्स या ऐप का इस्तेमाल करें।
6: याद रखिए, जल्दी पैसे का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता। पहले तस्दीक करें, फिर अप्लाई करें। महफूज रहिए, होशियार रहिए। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK बैंक, आपका अपना बैंक।
0: दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों इंटरनेशनल MSME डे को मनाने के हवाले से जेके बैंक ने मुल्कगीर तकरीबात का एहतमाम किया, जिसमें बैंक के तमाम 35 क्लस्टर्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बैंक के MDO CEO अमिताभ चटर्जी ने इन तकरीबात का इनेकाद जेके बैंक ने मुख्तलिफ तजारती अंजुमनों, व्यापार मंडलों और दीगर मुस्तनद इदारों के इश्तराक से किया था, जिनका मकसद माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के हवाले से आगही फैलाने से था, ताकि नौजवानों को कारोबार के साथ जोड़ा जाए, जिससे उनको रोजगार मिले और मुल्क को कौम की तरक्की में वो अपना रोल अदा कर सके। MDO CEO अमिताभ चैटर्जी ने इस मौके पर कहा कि नौजवान कौम का सरमाया होते हैं और उनके रोजगार में सरमायाकारी करना मुल्क की तरक्की की जमानत है। उन्होंने जोर दिया कि नौजवानों को हुकूमत की तरफ से जारी करदा मुख्तलिफ स्कीमों जिनमें मिशन युवा, पीएम ईजीपी, पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, स्टैंड अप इंडिया जैसी बेहतरीन स्कीमें शामिल हैं से इस्तेफादा करना चाहिए ताकि उनके अंदर मौजूद सलाहियतों को बरोए कार लाया जा सके। उन्होंने इस बात का वादा किया कि जेके बैंक हमेशा ऐसी कोशिशों का हामी बनेगा जिनका मकसद नौजवानों को एंटरप्रेन्योर्स बनाने से हो और ये कि नौजवानों को आगे बढ़कर इन सहूलियात से फायदा उठाना चाहिए।
7: एक जरूरी इतला, जम्मू कश्मीर बैंक के उन बुजुर्ग, माजूर और बीमार ग्राहकों से गुजारिश की जाती है जो किसी वजह से जम्मू कश्मीर बैंक की शाखों पर नहीं आ सकते हैं कि वो जेके बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग से फायदा उठाएं, जहां बैंक के नुमाइंदे उनके घर आकर मुख्तलिफ बैंकिंग सहूलियात जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स वसूल करना, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, कैश डिपॉजिट करना या अपने अकाउंट से कैश निकालने जैसी सहूलियात वगैरह शामिल हैं, नॉमिनल चार्जेस के एवज आपको घर बैठे मुयस्सर होंगी। लिहाजा आज ही अपनी बैंक शाख से राबता करें और इन सहूलियात से फायदा उठाएं।
0: दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों जेके बैंक ने मिशन युवा की पहली सालगिरह मनाई जिसका आगाज पिछले साल 28 जून को किया गया था। इस खास दिन को मनाने के हवाले से बैंक ने यकमुश्त 2828 युवा एप्लीकेंट्स के हक में कर्जे फराहम किए और मिशन युवा के तहत अभी तक मुस्तफिदीन की तादाद को 28,400 तक पहुंचाया, जबकि 1300 करोड़ से भी जायद रकूमत उनके हक में वागुजार की जा चुकी है। इस खास मिशन युवा डिसबर्सल डे तकरीबात की अगवाही बैंक के MDO CEO अमिताभ चैटर्जी ने की, जबकि बैंक के चीफ जनरल मैनेजर आशुतोष सरीन, जनरल मैनेजर राकेश मकोत्रा, डेप्यूटी जनरल मैनेजर्स तनवीर हुसैन, अर्जुन सिंह राठौर और दीगर आला अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। MDO CEO अमिताभ चैटर्जी ने इस मौके पर बोलते हुए बैंक के वर्कफोर्स की तारीफें की जिन्होंने इस खसूसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव को अमली जामा पहनाने में अपना दिन रात एक कर दिया। उन्होंने कहा कि मिशन युवा मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि एक नौजवान इस मुहिम के साथ जुड़कर एक कुंबे को आर्थिक रूप से सक्षम बना रहा है, जबकि अनएम्प्लॉयमेंट से जूझते नौजवानों को बावकार तरीके से कारोबार करने की तरफ रागिब करके यहाँ की मईशत में भी हैरत अंगेज तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं। नौजवान जो इस कौम का दो तिहाई हिस्सा है, इस मुहिम के साथ जुड़कर अपने अथाह पोटेंशियल को खूबसूरती और मेहनत के साथ चैनलाइज कर पा रहे हैं, जो बेहद सुकून और खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस मुहिम के अहदाफ न सिर्फ कबलज वक्त प्राप्त हों बल्कि ये कि नौजवान संजीदगी से इस मुहिम का हिस्सा बने और एंटरप्रेन्योरशिप का एक खूबसूरत माहौल वजूद में आए। उन्होंने जोर देकर कहा कि रवां बरस के आखिर तक ये तादाद कम से कम 50,000 तक पहुंचानी होगी ताकि ये मुहिम सूरत के साथ अपने अहदाफ हासिल करे। तकरीब में इससे कबल जनरल मैनेजर क्रेडिट राकेश मगोत्रा ने मिशन युवा की हुसूलियाबियों के हवाले से मालूमात और इस मुहिम से जुड़े अहम गोशवारे और बेनिफिशरीज के तासुरात से भी शरका को आगाह किया। दरियासना मिशन युवा के मिशन डायरेक्टर हरविंदर सिंह ने मिशन युवा की कामयाबी के लिए जेके बैंक की तारीफें की और जेके बैंक के जरिए इस मिशन की अमल आवरी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने दरखास्तों के टाइम बाउंड डिस्पोजल के लिए भी जेके बैंक की तारीफें की। वाजह रहे कि नौजवानों को रोजगार फराहम करने की गर्ज से गुज़श्ता साल शुरू किए गए मिशन युवा के जरिए जम्मू कश्मीर में 1,37,000 कारोबारी यूनिट कायम करके तकरीबन 4,25,000 नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए हुकूमती अहदाफ में जेके बैंक वाहिद इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के तौर हुकूमत के शाना बशाना काम कर रहा है।
8: एक जरूरी इतला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए।
0: सामईन अपने ग्राहकों के साथ सीधी मुलाकात करके उनकी मुश्किलात सुनना और उनका अजाला करना
9: یوں تو ہر کاروباری اور مالیاتی ادارے میں ملایا جاتا ہے، لیکن جے کے بینک کے اس عمل میں ادارے کے سربراہ کی بذات خود شمولیت ان ملاقاتوں کو معنی خیز بناتی ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ دنوں بینک کے ایم ڈی او سی ای او امیتابھ چٹرجی نے لہ میں ایک کسٹمر میٹ کی قیادت کی، جس میں پورے لہ سے آئے ہوئے کئی معزز گاہکوں نے شرکت کی۔ جے کے بینک کے زونل ہیڈ لداخ سیوانگ دورجے اور ایم ڈی او سی ای او کے اسپیشل سیکرٹری تنویر حسین بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ ایم ڈی او سی ای او امیتابھ چٹرجی نے لداخ میں گاہکوں کے ساتھ اس ملاقات پر اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا، جس دوران گاہکوں کی جانب سے مختلف سجھاؤ ان کے زیر غور لائے گئے۔ انہوں نے شرکا کو یقین دلایا کہ ان کی جائز مطالبات پر سنجیدگی سے غور کر کے انہیں عملایا جائے گا۔ ایم ڈی او سی ای او نے کہا کہ جے کے بینک جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کا اپنا بینک ہے، اور لداخ نواسیوں کا اس بینک پر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کا۔ انہوں نے کہا کہ لداخ کے لوگوں کی جے کے بینک کے ساتھ بڑی جذباتی وابستگی ہے، اور بینک ان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے انہیں اپنائیت کے احساس کے ساتھ سرو کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لداخ کے دور افتادہ اور دشوار گزار علاقوں میں بینکنگ خدمات میسر کرا کے بینک اپنا کرتویہ نبھا رہا ہے، جبکہ دیگر علاقوں کو بھی بینکنگ نیٹورک کے ساتھ جوڑنے کا عمل بھی زیر غور ہے، جس پر بینک عنقریب عمل درآمد کرے گا۔
10: ارے آپ یہ لائن توڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟
11: ارے آنے دیجئے، سینئر سٹیزن ہے۔
12: اب میرے کھاتے سے 350 روپے نکال دو۔
10: 350 روپے میں کیا آتا ہے؟
12: شہر سے میرا ناتی آ رہا ہے، اس کے لیے ریموٹ والی کار آتی ہے۔
13: جے اینڈ کے بینک، ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی، ہم آپ کی ضرورتوں کی قدر کرتے ہیں۔ جے اینڈ کے بینک، آپ لوگوں کا بینک۔
4: اور اب انعامی سوال کی باری۔
0: دوستو، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ سے ای سی ایل جی ایس کا فل فارم پوچھا تھا۔
4: اس سوال کا صحیح جواب ہے ایمرجنسی کریڈٹ لائن گارنٹی اسکیم۔
0: میل کے ذریعے ہمیں کئی سارے جوابات موصول ہوئے، جن میں بیشتر جوابات صحیح دیے گئے تھے، لیکن لکی ڈرا کے ذریعے چنے گئے آج کے 3 خوش نصیب ونرز کا نام ہے کشمیر ڈویژن سے اسلامیہ کالج حول کی عرفانہ، جموں ڈویژن سے پوگل پرستان رامبن کے سویندر سنگھ، اور لداخ سے لہ کی حمیرہ یاسین۔
4: انعام حاصل کرنے والے تینوں دوستوں کو جموں کشمیر بینک کی طرف سے بہت بہت بدھائی۔
14: خواب وہ نہیں جو آپ نیند میں دیکھیں، خواب وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے۔ لاکھوں نوجوانوں کے ایسے ہی خواب پورے کیے ہیں جموں کشمیر بینک نے۔
15: آج ہی نزدیکی برانچ پر پہنچیں اور دل کھول کے اپنے چھوٹے بڑے بزنس آئیڈیا کو ڈسکس کریں، انہیں صحیح راہ جموں کشمیر بینک ہی لے گا۔
14: جموں کشمیر بینک، عام لوگوں کا بینک۔
4: اور اب آپ نوٹ کریں آج کا سوال۔
0: 30 جون 2026 کو جے کے بینک نے 3 لاکھ کروڑ کا مجموعی کاروباری ہدف عبور کر لیا۔ آپ کو بتانا ہوگا کہ جے کے بینک نے 2 لاکھ کروڑ روپے کا بزنس مائل سٹون کس سال میں عبور کیا تھا۔ آپ کے جوابات ہمیں 11 جولائی سنیچروار شام 5 بجے تک ہمارے ای میل ایڈریس پر موصول ہو جانے چاہیے۔ یاد رہے کیا ای میل میں اپنا نام، پتا، فون نمبر اور جے کے بینک کا 16 ڈیجٹ والا اکاؤنٹ نمبر لکھنا نہ بھولیں۔
4: ہمارا ای میل آئی ڈی ہے jkbankdiary@jkbmail.com۔
0: تو لیتے ہیں آپ سے رخصت اگلی اتوار تک، جب تک کے لیے آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہماری 24/7 بینکنگ سروسز کے ذریعے، اور کسی بھی مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں ہمارا ٹول فری نمبر
4: 1-800-890-2122،
0: یا لاگ آن کریں ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.jkb.bank.in۔
16: ہلو،
17: کیا پر اتنے جلدی؟
16: ہلو،
18: کیا ہوا؟
16: ابو کی بیماری کے وقت ایک دوست سے پیسے ادھار لیے تھے، اسے پیسے آج کے
19: دقسائیں شائیں جموں اینڈ کشمیر بینک کے چند اخذت کھنے ڈکرم جے کے بینک ڈائری سندت سنگا جے آکاشوانی لینے چون چکتائیں سنگا تو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو چھو

0: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। आइए सुनते हैं प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है नीति शुक्ला।
3: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का, बहुत बहुत स्वागत है आप।
4: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का। जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए जी, और समाज में बड़ा परिवर्तन आए।
3: तो देवेंद्र जी, आप बड़े ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
4: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गाँव में या खेतों में ही बीता है। अच्छा। हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं हुआ।
3: अच्छा।
4: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहाँ की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहाँ से मेरा मन भी प्रभावित हुआ, जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गाँव को हरा भरा बनाएं।
3: तो ये कब शुरुआत की आपने?
4: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले, और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल अपने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
3: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं आप?
4: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
3: अच्छा।
4: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
3: जी,
4: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
3: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
4: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की उठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट, जन आंदोलन के रूप में कार्य।
3: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
4: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
3: अच्छा।
4: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारे स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
3: अच्छा।
4: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
3: अच्छा।
4: और उस पे हमने जैसे अक्सर समाज में होता है अगर बेटी के अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह। लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अगर भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में। और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते हैं।
3: कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
4: सोनीपत में है।
3: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
4: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया, और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए देश के लिए कार्य करते हैं उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं। लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे अगर भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है पेड़ लगाना वो माली का ही काम है। शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
3: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
4: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए देश के लिए काम करने की। और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है लंबी छुट्टी या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का इस पर्यावरण का काम कर सके। और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई। जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा, अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
3: आपने नाम भी रोशन किया क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
4: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है, चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते हैं।
3: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
4: जब हमें पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है। तो शुरू में घर में, परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है, ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले, एक हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े। लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े, जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी, तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं। हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरफ बढ़ते जा रहे हो, और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग भौतिक संसाधन वो बढ़ाए, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति, एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पर महत्व है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है। तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
3: जब आपने ये शुरू किया था अभियान, तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
4: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया, और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ, और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गांव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है, और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृ शक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूं, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूं क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं, गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
3: आपने जीव जंतु की बात की तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
4: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूं इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी और आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहां पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहने युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
3: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
4: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
3: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
4: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
3: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
4: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटी ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने, और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
3: अच्छा।
4: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूं, जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं, और खासकर NCR के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
3: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
4: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी, हम गांव गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को इकट्ठा इकट्ठा करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे, लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गाँव में तो वहाँ पर उस गाँव के हजारों व्यक्ति माताएं बहने बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। एक जैसे घर में त्यौहार होता है या शादी वगैरह होती है इस तरह गाँव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन
3: का
4: रूप।
3: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
4: जहाँ हम रहते हैं वहाँ के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने NCR की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें जैसे एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहे और ऑक्सीजन भी खुश होके दे सके।
3: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
4: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल चीनी या सब्जी लेनी होती थी वो अक्सर पुराने कपड़े थैला प्रयोग करते थे। और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला।
3: क्या बात है।
4: तो देखो ये पर्सनैलिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनैलिटी है, एक इंटरनल पर्सनैलिटी एक एक्सटर्नल, वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ। प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है और महीने की 150 हुई तो साल की हजारों पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गांव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं। और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण की गुलामी महसूस करते हैं, तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो अपना जीवन में, पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
3: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे तो काफी बदलाव आ सकता है।
4: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें, जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली ही अपनाए।
3: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है?
4: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें लोगों में बहुत कम जागरूकता है और पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं, हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ हैं या गांव में पंचायत को मिलती है या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है,
3: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
4: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूं अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
3: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहां से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
4: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
3: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
4: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
4: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
3: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
4: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
3: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहां देखने का सपना देखते हैं?
4: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे तितलियां, मधुमक्खियां और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
3: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में तब्दील हो, तो किस तरह से आप ये काउंट करते हैं?
4: ज्यादा करे जैसे हम ऑक्सीजन बाग लगाते हैं और उसमें पहले से ही होता है, इसमें आज इस गांव में 1100 पेड़ लगेंगे या 5000 पेड़ लगेंगे और उसमें प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाता है, गांववासी को जोड़ा जाता है, कि इस माता का ये पेड़ है, इस बच्चे का ये पेड़ है और उसको पूरे गांव को उसको जोड़कर उसकी सुरक्षा भी की जाती है, ऑक्सीजन बाग की और पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और उसमें ऐसा होता है 1-2 पेड़ की दिक्कत हो सकती है, नहीं तो उसमें मैं कहता हूँ 99% पेड़ कामयाब होते हैं। जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
3: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
4: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो वो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी, मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी, मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़ा प्रेरणा मिलती है।
3: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
4: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है, तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
3: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: भारत के नागरिकों को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिएं, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
3: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज

0: ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद बहन जी।
0: तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति शुक्ला को। नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से देश के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को और मजबूत करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों ही देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतिकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme, Viksit Udan, in Jodhpur, Rajasthan yesterday, to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
1: Udan Yojana ke naye charan ki bhi shuruaat hui hai. इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है
2: Prime Minister Modi also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. The monsoon session of Parliament will commence on the 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. Renowned Pandwani singer of Chhattisgarh and Padma Vibhushan awardee Tijan Bai has passed away. She had been suffering from a prolonged illness and was undergoing treatment at AIIMS Raipur. She breathed her last at around 3:15 a.m. today. With her powerful voice, compelling stage presence and distinctive style of narration, Tijan Bai gave Pandwani a new identity not only across India but also internationally. Her remarkable ability to bring the stories of Mahabharata to life on stage made her one of the most celebrated exponents of Indian folk culture. In recognition of her outstanding contribution to Indian folk art, she was honored with Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan, the country's second highest civilian award. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over her demise. In a social media post, President Murmu said that Tijan Bai brought the tales of Mahabharata to life on stage with her powerful voice, commanding presence and unique style of presentation. The President said that Tijan Bai brought recognition to Chhattisgarh's rich Pandwani tradition, both in India and abroad, through her exceptional talent, dedication and years of rigorous practice. She said that her contribution to the dissemination of India's cultural heritage will remain memorable. Prime Minister Narendra Modi said that she earned global recognition for this folk art form from Chhattisgarh through her magnificent performances. The Prime Minister said that her demise is an irreparable loss to the world of art and culture. Government has increased the procurement price of onions for the price stabilization buffer by 13% from 1875 rupees per quintal to 2125 rupees per quintal. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that the revised procurement price will ensure better returns for onion farmers while supporting buffer procurement efforts. The annual Amarnath Yatra has witnessed an encouraging start this year with 32,313 devotees offering prayers at the cave shrine during the first 2 days of the pilgrimage. 20,145 pilgrims performed darshan at the cave shrine on the second day of the Yatra, registering a notable increase over the 14,515 devotees who visited the shrine on the corresponding second day last year. Australian Prime Minister Anthony Albanese has hailed India as key economic partner ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit to Australia from 8th to 10th of this month. In a statement, Australian Prime Minister's office said, as the world's fourth largest and fastest growing economy, India is a critical economic partner for Australia. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh today pay tribute to former Union Minister Ram Vilas Paswan on his birth anniversary today. In a social media post, Mr. Modi said that Ram Vilas Paswan made significant contributions to the upliftment of society's deprived and weaker sections. In the FIFA World Cup, France booked their place in the quarterfinals with a hard-fought 1-0 victory over Paraguay in the round of 16 at Philadelphia. Captain Kylian Mbappe scored the only goal of the match from the penalty spot in the 70th minute after VAR awarded France a spot kick. France will now face Morocco in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.

0: नमस्कार, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और ये कार्यक्रम है आज के मेहमान। मैं हूँ रश्मि कुकरेती, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और मेरे साथ है आपकी जानी पहचानी मनपसंद इंदु पांडे।
1: मैं भी आज आपके साथ हूँ और मैं भी सबको कहना चाहती हूँ बहुत बहुत नमस्कार और सबका स्वागत है।
0: और एक विशेष मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है, उनके बारे में भी तो बताओ।
1: बिल्कुल रश्मि जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हम दोनों सोचिए एक ही एक स्पेशल गेस्ट लेकर के आए हैं अपने स्टूडियो में, जिनका नाम है गरिमा अवतार, जो एक ऐसे फील्ड से आती हैं जिसके लिए माना जाता है कि वो पुरुषों का ही क्षेत्र है, कार रैली। वो बहुत सारी रैली में कार ड्राइव करती हैं और एक रेसर की तरह जानी जाती हैं। तो गरिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी गोल्ड के स्टूडियो में।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। आपने जैसे बोला, मैं एक्सट्रीम रैली में हूँ एंड जब मुझे मेरे फादर ड्राइविंग सिखा रहे थे, मैं छोटी थी, तो उनके मन में भी कभी विचार नहीं आया था, कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि ये कोई करियर ऑप्शन भी हो सकता है। मोटर स्पोर्ट में, एक छोटे शहर से हूँ मैं, बरेली से हूँ, तो कभी नहीं सुना था, नहीं पढ़ा था इसके बारे में। लेकिन इस फील्ड में आना और इसमें करियर बनाना, ये मेरे लिए एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस की तरह था। हम जैसे बहुत बार प्लान्स बनाते हैं और कभी हमारे प्लान्स अगर पूरी नहीं हो तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान हमारे लिए बड़े प्लान्स बनाता है जो हमारी सोच के बाहर है। मुझे बचपन से एक्चुअली गाड़ियों का बहुत शौक था। मेरे फादर हमको बहुत इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे और उनका बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट रहा है, तो हमेशा उन्होंने बोला है कि खेलो, इंडिपेंडेंट बनो, तरक्की करो। खूब सारे उन्होंने मेरे मन में ख्वाब डाले थे, आईएएस ऑफिसर बनो, आईपीएस ऑफिसर बनो,
2: अपने पैरों पर खड़े हो,
0: अपने पैर पे खड़े हो। मुझे अभी भी वो एक छोटा सा दृश्य याद है, जब पापा के पास एक लेटर आया था फ्रॉम सम एम्बेसडर ऑफ द कंट्री, एंड उसमें वहां पे अशोक का चक्र, वो जिसे मना, इतना वो देख के इतने प्राउड फील कर रहे थे कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम एम्बेसडर बनो किसी कंट्री का, आईएफएस ऑफिसर बनो
1: जी।
0: तो मन में उन्होंने बहुत ख्वाब डाले थे।
2: लेकिन हम तो कहेंगे कि आप भी एक प्रकार के दूत हैं बहुत सारी महिलाओं के लिए, एक प्रेरणा स्रोत है, जो कि आपने इस तरह का काम चुना जिसमें कि कल्पना करना मुश्किल होता है। भाई गाड़ियां तो बहुत सारी महिलाएं चलाती हैं, इंदु भी गाड़ी चलाकर आती है, हम लोग भी गाड़ी चलाकर आते हैं, पर उसको कार रैली में उतरना, एक रेसिंग करना, भाई वो तो वाकई मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। इंदु तुम बताओ।
1: नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ। तो गरिमा, जब आपने डिसाइड किया कि मुझे कार रेसिंग में अपना करियर बनाना है, तो वो मोमेंट कैसा था? अपने आप से स्ट्रगल, या जिसको भी बताया आपने
0: जी,
1: और ये फील है जहाँ आदमी लोग ज्यादा हैं,
0: राइट,
1: तो वो पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा?
0: ये मैंने प्लान नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में कभी जाऊंगी और इसमें मेरा कुछ तरक्की होगी या कुछ मेरा मुकाम बनेगा। मैं एक फुल टाइम जॉब में थी, फुल टाइम जॉब के साथ साथ मेरा एक्चुअली रैलिंग वॉज अ वीकेंड पैशन, मतलब मैं वीकेंड्स में अपना काम वाम खत्म करके पूरा रैलीज में चले जाती थी, लेकिन मेरा फुल टाइम जॉब था तो मेरी अर्निंग एंड ऑल पूरी वहां से आ रही थी, बिकॉज मोटर स्पोर्ट एक्चुअली एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। पहले वो बहुत रिकग्नाइज नहीं था गवर्नमेंट से, अभी वो रिकग्नाइज हो गया, उसको अपना जो दर्जा मिलना चाहिए वो मिल चुका है। उस समय मोटर स्पोर्ट में जाना कोई ऐसा करियर ऑप्शन नहीं था,
2: मतलब आप शौकिया करते थे।
0: मैं मेरा मोर ऑफ अ पैशन था, मतलब पैशन फॉर ड्राइविंग, पैशन फॉर कार्स। मैंने 9 साल एक्चुअली मेरे जॉब में काम किया है फुल टाइम, एंड उसके बाद देन रियलाइज हुआ कि इस फील्ड में बहुत पोटेंशियल है। आई वाज लकी कि मैं रैलिंग में शुरू में आई वाज पिक्ड अप बाय महिंद्रा एडवेंचर रैली टीम, सो दैट वाज एक किक स्टार्ट था मेरे करियर के लिए। एंड ग्रेजुअली फिर मैंने अपने आप को खूब ट्रेनिंग दी और उसके बाद मैं एक्सट्रीम रैलिंग में आ गई। तो एक्सट्रीम रैलिंग इज ऑल अबाउट फास्ट ड्राइविंग, यू नो, आप द फास्टेस्ट विन्स वाला। जैसे दो तरह की रैलिंग होती है, एक होती है टीएसडी रैलिंग, विच इज टाइम स्पीड डिस्टेंस फॉर्मेट रैली, जो रेगुलरिटी रैली रहती है जिसमें एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रहती है, मतलब उससे ज्यादा तेज नहीं चला सकते। इट्स ऑल अबाउट नेविगेशन, उसमें एक्यूरेसी ऑफ टाइम रहता है, मतलब आप टाइम से पहले पहुंच जाएंगे तो पेनल्टी लगेगी, टाइम के बाद पहुंचेंगे तो पेनल्टी, सेकंड्स की पेनल्टी लगती है। हाँ हाँ,
2: अच्छा, मतलब बड़ा योजनाबद्ध तरीके से इसमें आप ड्राइविंग करते हैं।
0: बिल्कुल, वो नेविगेशन का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन दूसरी एक फॉर्मेट रैली होती है जो एक्सट्रीम रैलिंग होती है, उसमें फास्टेस्ट विंस है, उसमें मतलब एनक्लोज ट्रैक्स होते हैं। रेगुलरिटी रैली जो मैंने बताया, टीएसडी रैली, तो रोड्स पे भी होती है, नहीं है क्योंकि उसमें स्पीड ज्यादा नहीं होती है, टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड एवरीथिंग. लेकिन ये जो एक्सट्रीम रैलिंग होती है एनक्लोज ट्रैक्स पे होती है. देन आई गॉट इनटू एक्सट्रीम रैलिंग.
2: एंड इसमें स्पीड कितनी रहती है एक्सट्रीम रैलिंग में?
0: सो फास्टेस्ट, मतलब यू नो, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो ट्रैक्स रहते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के ट्रैक्स रहते हैं. ग्रेवल ट्रैक्स भी रहते हैं, मतलब छोटे छोटे पत्थर, तो टमैक है, ग्रेवल है, सैंड होता है, डेजर्ट स्टॉर्म रैली जैसे होती है वो सैंड ड्यून्स भी होती है. माउंटेन्स में हम ड्राइव करते हैं तो माउंटेन्स में तो हेयरपिन कर्व्स भी होते हैं, ऊपर चढ़ाई होती है, नीचे होते, मतलब कैसे टेढ़े मेढ़े रस्ते होते हैं, पत्थर भी होते हैं खूब सारे, तो हर तरह के ट्रैक कंडीशंस. कंट्री साइड होता है तो मतलब यू नो यू हैव टू ड्राइव थोड़ा ध्यान से कि भाई आजू बाजू पेड़ भी हैं आपको दिख रहे हैं, यू नो सब. इसको रैलिंग बोलते हैं. रैलिंग डिफर करती है सर्किट रेसिंग से. सर्किट रेसिंग होता है जो F1 रेसिंग होती है वो सर्किट रेसिंग होती है, जहाँ पे एक ही ट्रैक के लैप्स लेते रहते हैं आप.
2: ज्यादातर फिल्मों में हम वही रैली देखते आए हैं.
0: हाँ. एंड उसमें एक साथ बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं, मतलब आप अगर सर्किट रेसिंग में देते हैं. एक्सट्रीम रैलिंग में गाड़ी एक एक करके जाती है, मतलब आपके 20 सेकंड्स या 30 सेकंड्स या समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन रैली फॉर्मेट, 10 सेकंड्स के डिफरेंस में एक दूसरी गाड़ी जाती है. एंड देन आप दूसरे को टाइम मेकअप करके उसको ओवरटेक करके देन यू नो आप करते, बट बेसिकली फास्टेस्ट विंस वाला है.

0: जब आपका चुनाव हो गया
1: जी
0: उस एडवेंचर स्पोर्ट में,
1: हाँ
0: तो आपकी शुरुआत फिर आगे कैसे बढ़ी और आपने किस प्रकार से इसमें करियर सोच लिया कि अब ये करियर मेरा होने वाला है, मैं ऐसे करियर को मैंने चुन लिया है, या हम कहें करियर में आपको चुना कि अब मैं पूरा समय कार रेसिंग को दूंगी, रैलिंग को दूंगी?
1: जैसे मैंने बताया, मोटर स्पोर्ट इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, इसमें इतने इजिली स्पॉन्सर्स नहीं मिलते हैं, स्पेशली एक्सट्रीम रैलिंग में, बिकॉज इतने बड़े बड़े लंबे लंबे 250 किलोमीटर के ट्रैक्स होते हैं, वहां पे मीडिया कवरेज इतना अमेजिंग नहीं हो पाता है। जैसे सर्किट रेसिंग में आप एक ट्रैक को आसानी से कवर कर सकते हैं। मर्सिडीज बेंज का लक्स ड्राइव प्रोग्राम होता है, तो उसमें आई वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल फीमेल ड्राइवर चोजन बाय मर्सिडीज बेंज, तो वहां पे बहुत साल मैंने एज ए प्रोफेशनल ड्राइवर ड्राइव किया। फिर उसके बाद ग्रेजुअली मैं सोशल मीडिया पे आई एंड कंटेंट बनाने लगी, कंटेंट क्रिएटर बन गई। उसके बाद मैं जर्नलिस्ट टाइप, मतलब यू नो, मेरे को इनवाइट्स आने लगे फॉर मीडिया लॉन्चेस, मैं वहां पे जाके उनका कंटेंट बनाने लग गई एज अ जर्नलिस्ट। एंड बेसिकली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं लग्जरी एंड हाई परफॉर्मेंस कार्स का ही कंटेंट बनाती थी, एंड उनका ब्रांड एसोसिएशन होता था, मीडिया लॉन्चेस के लिए मैं इनवाइट करती थी। मैंने अभी ग्रेजुअली, लेकिन अभी थोड़े टाइम से मैंने मास कार्स के लिए का भी कंटेंट बनाना चालू कर दिया है। एक मेरा पॉडकास्ट है जहाँ पे एथलीट्स जो हैं, जो अर्जुन अवॉर्डीज, वर्ल्ड चैंपियंस, ओलंपियंस, उनको इंटरव्यू करती हूँ, एंड दिस पॉडकास्ट इज बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड मोटिवेशन, एंड बेसिकली इट्स अबाउट कवरिंग जो एथलीट्स हैं उनकी जर्नी को कवर करने के लिए।
2: हाँ, तो गरिमा, जैसे आपने बोला कि एक्सट्रीम कार रैली करती हैं,
1: हाँ जी,
2: तो अमूमन जो आम इंसान होता है जब वो गाड़ी में बैठता है, तो हम चाहें या ना चाहें, लेकिन हमारी कुछ पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो जब ड्राइव करते हैं तो हावी होती हैं, और तब हमारी स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, तो वो क्या प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है?
1: नहीं नहीं नहीं, उसमें तो बल्कि उल्टा होता है। यहाँ पे जब आप गाड़ी में सीट बेल्ट लगा के जब हेलमेट पहनते हैं, तो आप एक जोन में जाते हैं, मतलब ऐसे मेडिटेटिव जोन में जाते हैं जब अपने आप को एकदम काम रखना होता है, नो थॉट्स, आप गाड़ी और उससे पूरा मर्ज हो जाते हैं, आप उसी जोन में रहते हैं, उस समय सिर्फ गाड़ी ड्राइविंग और रेसिंग के अलावा कुछ और थॉट्स नहीं होते हैं। आपको इनफैक्ट गियर्स चेंज करते तो एकदम एग्रेशन में नहीं करना है, आप एग्रेशन में करेंगे गियरबॉक्स हाथ में आ जाएगा आपके, तो आपको एकदम काम ली, जितना आप फोकस और कंसंट्रेशन रहेगा आपका, आप क्योंकि वो

हमारे बाजू में बैठ के नेविगेटर हमको कॉन्स्टेंटली नोट्स बताते रहते हैं, वो बताते रहते हैं कि डायरेक्शंस बताते हैं। हमारे साथ एक्सट्रीम रनिंग में एक नेविगेटर भी होता है, क्योंकि हम इतने हाई स्पीड्स पे गाड़ी चलाते हैं, तो वो साथ में हमको ये बताते हैं कि अरे आपको 50 मीटर्स के बाद, 100 मीटर्स के बाद 90 डिग्री टर्न है।

0: एकदम स्ट्रेट रोड था एंड उसके बाद एक ग्रेवल ट्रैक में थोड़ा सा वो फिसलने वाला जैसे होता है एंड एकदम शार्प टर्न था, तो शार्प टर्न में मेरी गाड़ी पलट गई, पूरा टर्टल हो गई एंड एकदम फिनिश लाइन से मतलब आई थिंक 200 मीटर पहले गाड़ी टर्न हो गई एंड मेरे जो नेविगेटर थे मतलब वो भी दुखी हो गए कि हम, क्योंकि हम जब कोई रैली में आते हैं तो उसके लिए हम बहुत तैयारी करते हैं, इतने पैसा खर्च करते हैं और महीनों से तैयारी होती है, और हर एक रैली में ऐसा भी नहीं है कि हमको कोई अवार्ड मिलता है अगर हमने रैली फिनिश नहीं करी, जैसे डिड नॉट फिनिश DNF हो जाता है तो उसका कोई हमको ट्रॉफी भी नहीं मिलती है। पहले रैली को फिनिश करें तब थोड़ा एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाता है, कभी कभी सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन अगर हमारे कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया गाड़ी के साथ या कुछ प्रॉब्लम हो गई जैसे गाड़ी पलट गई तो फिर वो हम फिनिश नहीं करते तो पूरी मेहनत बेकार। तो लेकिन ये हम पैशन है, हम फॉलो करते हैं, तो
1: पर जब गाड़ी पलट गई तो पहला जो सवाल दिमाग में आया कि आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ, आपको चोट तो नहीं लगी उस समय?
0: अभी क्या होता है कि हम जो ये कार्स में जाते हैं तो ये बड़ी सेफ कार्स होती हैं, इनकी पूरी स्क्रूटनी होती है, दीज कार्स आर रैली प्रिपेयर्ड कार्स, तभी ये स्पोर्ट एक्सपेंसिव है। गाड़ी में पूरा रोल केज लगा हुआ होता है कि गाड़ी पलट गई तो दबे नहीं गाड़ी।
1: अच्छा,
0: सीट बेल्ट, 5 पॉइंटर सीट बेल्ट होती है, हमारा सूट होता है जो फायर प्रूफ सूट होता है वो हमको पहनना होता है, सारे इनर्स विनर्स सब FIA अप्रूव्ड होते हैं, हेलमेट FIA अप्रूव्ड होता है, शूज FIA अप्रूव्ड होता है, तो गाड़ी के अंदर की सीट्स अलग, बकेट सीट्स कहते हैं, स्टेयरिंग व्हील भी अलग होता है, तो अंदर बहुत मॉडिफिकेशन करे होते हैं गाड़ी के अंदर, तो बहुत सेफ होती है गाड़ी। इग्निशन भी हम उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं इमिजिएटली, मतलब वो जो कट ऑफ कर सकते हैं पूरे इलेक्ट्रिकल्स को बाय जस्ट वन स्विच, इस टाइप का कोई अगर कुछ इमरजेंसी ऐसे होती है। तो जब मेरी गाड़ी पलटी तो ऑब्वियसली हम विंडो से बाहर निकल के आ गए, मैं और मेरे नेविगेटर, हम सेफ थे, बट उनको बड़ा दुख हुआ कि अरे हम बस फिनिश लाइन से पहले ही एकदम गाड़ी पलट गई। बट बहुत ही ना मेरे मन में एक ऐसा है कि नहीं नहीं हार मानना है, कुछ करना है, जैसे कंट्री साइड में होती है रैलीज तो वहां पे थोड़े से अंदर की तरफ थोड़े फार्मर्स दिखे, थोड़े वर्कर्स थे, तो हमने उनको बुलाया, तो गाड़ी को एक्चुअली रोड के एकदम पास में ही पलटी थी तो उसको रोड के ऊपर वापस से उसको लेके आ गए, गाड़ी को मैंने बैठ के इग्निशन ऑन किया तो स्टार्ट हो गई गाड़ी और हमने एक्चुअली उस रैली को फिनिश किया एंड वी वन इन दैट कैटेगरी।
1: बात है, देखिए जब जीत होती है ना तो फिर जश्न भी होना चाहिए इंदु।

0: ड्राइविंग सेफ्टी के बारे में थोड़ा जरूर बताएं।
1: जरूर,
0: एक महिला जब गाड़ी चलाती है तो उसको कई बार हिचक होती है, मैं चला पाऊंगी गाड़ी तो, लेकिन हाँ, जब वो निकलती है तो क्या सोच के शुरुआत करे और किस प्रकार से अपनी सेफ्टी का ध्यान रखे, इसके बारे में जरूर बताएं।
1: पहले तो मैं जो एक मन की जो
0: हिचक है
1: उसके बारे में बोलना चाहूंगी कि पूरे आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चलाइए। कोई भी महिला किसी पुरुष से कम नहीं है किसी भी स्तर पे। जस्ट बिकॉज हमको आदत नहीं है, हमने शुरू से बचपन से गाड़ी नहीं चलाई है, तो हमको थोड़ा सा, हम जैसे बहुत एज के बाद गाड़ी चलाना सीखते हैं तो इसलिए हिचक पैदा होती है क्योंकि हमको इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। जितना हमने प्रैक्टिस किया उतना ही हम अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं। बॉयज क्यों इतने अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि वो बचपन से चलाना चालू कर देते हैं, वो अपने आप ही सीख लेते हैं, उनको शौक होता है। तो ये शौक मेरे को बचपन से, मतलब पापा ने सिखा दिया तो मैं गाड़ी लेके, मेरे को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो गई थी, इसलिए फिर वो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाता है। सेफ्टी के बारे में ये कहना चाहूंगी कि एक तो सीट बेल्ट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीछे सीट पे भी अगर आप बैठे हैं गाड़ी के पीछे, तो ये हमारा आदत नहीं है, हम पीछे सीट पे नहीं पहनते हैं सीट बेल्ट, लेकिन वो भी बहुत पहनना जरूरी है। एयर बैग्स भी काम नहीं करते हैं अगर आपने सीट बेल्ट पीछे पहनी नहीं है। अगर अपनी सेफ्टी पूरी चाहिए तो सीट बेल्ट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ ही
0: आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर पीछे लोग बैठे हैं और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है,
1: तो आगे के भी एयर बैग्स रुक जाते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, तो वो आगे वाले पैसेंजर्स तो सेफ रहेंगे अगर उन्होंने सीट बेल्ट पहनी है, तो पीछे वाले पैसेंजर्स, क्योंकि आजकल एयर बैग्स हर जगह रहते हैं ना
0: जी,
1: तो पीछे वाले, मतलब अगर एयर बैग खुला और आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो आपको इंजरी हो सकती है
0: जी।
1: तो सीट बेल्ट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, हो सकता है एयर बैग काम भी नहीं करे अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो। उसके अलावा मैं बोलूंगी कि मोबाइल का यूज ड्राइव करते समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये भी बहुत जरूरी है कि जो यंग बच्चे हैं, मतलब युवा के लिए, ये मैं जरूर मैसेज देना चाहूंगी कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाइए। बिना ड्राइवर्स लाइसेंस के तो बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाइए, ड्राइविंग लाइसेंस में चलाइए, अपने रूल्स फॉलो करिए। अगर आपको शौक है स्पीड का, आपको तेज गाड़ी एक्सपीरियंस करना है, तो आप उसको, उसमें मोटर स्पोर्ट के छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करिए। स्पीड ड्राइविंग हैज टू बी ऑन द ट्रैक, ऑन अ रेस ट्रैक, नेवर ऑन अ रोड। एक रोड सेफ्टी अभियान हुआ था अमृतसर से कन्याकुमारी, सो इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड होम मिनिस्ट्री एंड फिक्की की तरफ से था। छह गाड़ियां थी, ऑल वुमेन ड्राइवर्स, और आई वॉज लीडिंग द ड्राइव। ये मैसेज फैलाना था कि भाई टू ड्राइव सेफ, ड्राइव अंडर कंट्रोल स्पीड्स, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। आपको जब भी थोड़ी, मतलब आप थक जाते हैं, नींद आने लगती है, तो आप प्लीज रुक जाइए, कप कॉफी पीजिए, तब चलाइए।
0: गरिमा क्यों ना अब एक और गीत सुन लिया जाए इस मौके पर।

0: हम ये भी जानते हैं कि गरिमा बहुत अच्छा गाती भी है, मतलब कार चलाने के साथ साथ गुनगुनाती भी है, गाती भी है और बहुत अच्छे से सीखा भी हुआ है। इंदु, क्या ये बात सही है जो मैं कह रही हूँ?
1: बिल्कुल सच है, लेकिन दोनों चीजें कितनी उल्टी है ना। हाँ। हम लोग तो गाना सुनते हुए गाड़ी चलाते हैं। हाँ। और ये गाना गाते हुए गाड़ी चलाते हैं। ऐसा होता है गरिमा,
0: तो ये पक्ष भी उजागर होना चाहिए ना। तो अपने थोड़ा गीत संगीत के बारे में बताएं।
2: म्यूजिक हैज बीन माय फर्स्ट लव एक्चुअली, लेकिन म्यूजिक मेरे लिए हमेशा एक स्पिरिचुअल जर्नी रहा है। मैंने ट्रेनिंग ली है इंडियन क्लासिकल वोकल म्यूजिक में एंड अभी भी मतलब सीखती रहती हूँ मैं। एक्चुअली ये भी गिफ्ट मुझे मेरे फादर से मिला है। पापा बहुत स्पिरिचुअल थे, मुझे ऐसे मेमोरीज हैं जब वो बहुत घंटों तक बैठ के ध्यान करते थे और उनके साथ एक हारमोनियम छोटा सा रहता था, वो सा और पा लगा के बहुत सा पा का भी रियाज करते थे एंड मैं उनके साथ बहुत बार बैठ जाती थी। मुझे तो बहुत लाइक जैसे आई वाज अ बिग फैन ऑफ माय डैड, तो मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था।
1: तो दोनों चीजों की प्रैक्टिस, कार चलाने की अभी तक चल रही है?
2: अभी तो मैं रैली ड्राइविंग, तो कॉम्पिटिटिव ड्राइविंग नहीं कर रही हूँ, मैं अभी ड्रिफ्टिंग कर रही हूँ। मेरी ड्रिफ्टिंग की मैंने ट्रेनिंग ली है, एक ड्रिफ्ट कार तैयार करी है अपने लिए, C200 है, मैनुअल कार है। आपको ड्रिफ्टिंग के बारे में थोड़ा आइडिया है?
1: मैं तो रश्मि की शक्ल देख रही हूँ।
2: सो ड्रिफ्टिंग इज द आर्ट ऑफ ड्राइविंग साइडवेज, उसमें ना थोड़ा एडवांस ड्राइविंग टेक्निक्स लगते हैं और
0: कुछ ऐसा है कि दो पहियों पर गाड़ी चलाना, टेढ़ा करके गाड़ी चलाना, जिसके लिए हम हमेशा मना करते हैं अपने बच्चों को की ध्यान से,
2: वो स्टंट ड्राइविंग होती है। मैंने तो नहीं सीखा है वो, लेकिन वो बहुत लोग स्किलफुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में वो भी स्टंट ड्राइविंग पॉसिबल है। ये ड्रिफ्टिंग में क्या होता है कि आपका जो बैक ऑफ द कार होता है, मैं आपको लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो डेलिब्रेटली कार को अनस्टेबल करके स्टेबलाइज करते हैं। डोनट्स अगर आपने देखा है, डोनट्स हम बनाते हैं, तो रैलिंग तो अभी नहीं हो रही है लेकिन ड्रिफ्टिंग आई हैव स्टार्टेड डूइंग, सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। एक्सपीडिशन में आपने कभी पार्टिसिपेट किया है कभी?
0: सो फिलहाल तो ये कल्पना का जो सफर है उसमें हम आपके साथ ड्राइवर के पीछे बैठे हुए हैं, हम साथ बैठे हुए ना, बस ये कल्पना में सफर किया है।
2: अरे वाह। सो जैसे एक्सपीडिशंस होती है, कार एक्सपीडिशंस, तो मैंने एक ऑर्गेनाइज करी थी ऑल वुमेन्स कार एक्सपीडिशन, वेयर एक ग्रुप ऑफ वुमेन, लाइक हम 11 लेडीज थी, हम स्पिति गए और दिस एक्सपीडिशन वॉज ओनली फॉर फीमेल कार ड्राइवर्स। तो बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। स्पिति की रोड्स दे आर सपोज टू बी द वर्ल्ड टफेस्ट रोड्स एक्चुअली एंड रिस्की भी रहती हैं थोड़ी, बट दीज लेडीज वर फ्रॉम ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स, ऐसे दे वर नॉट एक्सपर्ट ड्राइवर्स, वो हाउस वाइफ्स भी थी, थोड़ी सी कोई एक दो एल्डरली लेडीज भी थी और काफी लेडीज ने तो हाईवे पे भी नहीं चलाया हुआ है, बट हमने थोड़ा उनको ट्रेन करते हुए हमने एक्सपेडिशन किया था, बड़ा सक्सेसफुल रहा था और ये लाइफ टाइम की हमारी फ्रेंड्स बन गई हैं अभी।
0: Wow. मुझे लगता है बहुत सारी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो प्रेरणा ले रही होंगी, बहुत उनको अच्छा लग रहा होगा कि हम भी ये कर सकते हैं और कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर सकते हैं, क्या कहती हो तुम?
1: बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि इनको सुन के जब हम दोनों इतने उत्साहित हो रहे हैं, जो बाहर हमने सुन रहे होंगे, तो वो भी शायद कुछ लोग तो ऐसे भी सोच रहे होंगे कि चलो इसमें हम करियर क्यों ना बनाएं, तो उनके लिए कुछ है आपके पास मैसेज कि क्या कहना चाहेंगे आप?
2: मोटर स्पोर्ट में करियर बना सकते हैं आप अगर बचपन से शुरू से ट्रेनिंग लें और स्टार्ट करें, कोई अच्छी रेसिंग टीम के साथ में जुड़ जाएं और स्पॉन्सरशिप अगर आपको अच्छी मिल जाए तो आप जरूर करियर बना सकते हैं। रेसिंग के अलावा मतलब और भी बहुत कार से रिलेटेड चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, जो मैं जैसे ऑटो जर्नलिज्म, आप लिख सकते हैं, गाड़ियों के रिव्यूज लिख सकते हैं, आप वीडियोज बना सकते हैं, कॉन्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेस के लिए त्याग बहुत जरूरी है। मन में अगर आपके सच्चाई है, दृढ़ता है, आत्मविश्वास है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। काफी बार हमको पता होता है हमको क्या चाहिए, लेकिन हम अपने आप को सोचते हैं कि हम वी आर नॉट गुड इनफ, या फिर हम अपने आप को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम दूसरों के लिए चीयर लीडर्स बन जाते हैं, हमारे मन में शंकाएं आ जाती हैं कि हम कैसे अचीव करें। बट मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को चांस दें, आप जरूर सफलता के ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। और बहुत ज्यादा जरूरी है कि गिव अप नहीं करें,
1: रश्मि से कितनी अच्छी बात है ना, इन्होंने एक लाइन बोली मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम दूसरों के लिए चीयर लीडर्स होते हैं अपने लिए नहीं होते।
2: हाँ।
1: ये सच में बहुत बड़ी बात
2: ऐसा
1: है,
2: ऐसा नहीं होना चाहिए,
1: ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। हमें अपने आप को एंकरेज करते रहना चाहिए।
2: हाँ।
1: और आज आपको देख के ना मतलब सच में एकदम पावर हाउस जैसी फीलिंग आ रही है,
0: बहुत हिम्मत सी आ गई। मतलब लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं और महिलाएं तो कितनी सारी चीजें साथ साथ कर रही होती है, तो वो तो कुछ भी कर सकती है। ऐसा ही एक संदेश जो हमें आज मिला है, मन तो कर रहा है गरिमा आपसे बात करते रहे करते रहे, लेकिन गरी हमें कह रही है कि समय हो चुका है, इंदु और हमें जाना है, दूसरे कार्यक्रम करने वालों को भी आना है। तो हम कहें बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल गोल्ड के लिए समय निकालने के लिए।
2: थैंक यू सो मच।
1: हाँ बिल्कुल, और इस यात्रा यहीं पे हम लोग रुकते हैं।
0: फिलहाल जो रैली है वो अभी रोक दी जाएगी।
2: जरूर जरूर, मैं एक दो लाइन्स बोल के जरूर एंड करना चाहूंगी, वो मेरी फेवरेट लाइन्स है। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है, इन सितारों के आगे जहान और भी है, अभी तेरे इम्तिहान और भी है।
0: क्या बात है, वाह बहुत सुंदर। तो परवाज है काम हमारा, महिलाएं जो है जब अपने पंखों में हवा भरती है तो भाई कहीं भी उड़ सकती है, आकाश बहुत बड़ा है। तो इस आकाश में उड़े, विचरे, अपने कल्पनाओं में रंग भरे और ये सोचे कि हम जिंदगी की हर मुश्किल को सॉल्व कर सकती है, उसका समाधान निकाल सकते हैं, मन में हिम्मत होनी चाहिए। तो जैसा कि गरिमा ने कहा कि परवाज है काम तेरा, यही काम है हमारा। और इसी के साथ हम समेटते हैं ये कार्यक्रम जिसका नाम है आज के मेहमान। हम बता दें आज हमारे साथ इंदु और मेरे साथ स्टूडियो में थी गरिमा अवतार, कार रैली ड्राइवर।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

कसता कलाकार फिल्मीलु किशोर कुमार ने सनाजात इलुर सुमकन इंद्रवर यालो यांस्रिकन कल्याणजी आनंदजी।

स्टंटमैन फिल्मिलु कुमार सानू तंग अलकायाक निकने सनाचात इलोर चोमकन समीर यांगलो यांग श्रीकन नदीम श्रवण

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियों को हटा लिया है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्ची में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में भी महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Magu. The government has issued a stern notice to Meta on child sexual exploitative and abuse material seen in paid ads on social networking site Instagram. Official sources said government has ordered Instagram to disable all ads and content promoting and facilitating access to CSEM. Ministry of Electronics and IT has demanded a detailed explanation from Meta within 7 days. Earlier, the ministry had taken cognizance of reports that Instagram showcased certain objectionable material that promoted child sexual abuse and issued directions to officials to seek a response from Meta. Government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has been amended, removing key emergency provisions that had allowed the government to prioritize the allocation of domestically produced natural gas and imported LNG. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of this month. The minister today sanctioned and released assistance of 25,000 crore rupees to the states under the mission through video conferencing. Mr. Chauhan said, under this act, over 7.5 lakh crore rupees will be invested in 2.86 lakh panchayats in the next 5 years to accelerate the vision of Viksit Bharat. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till the 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi's visit to Indonesia beginning tomorrow will give impetus to the existing relationship between both the countries and will also open up new areas of cooperation. In an interview to Akashvani in Jakarta today, Mr. Sandeepan Chakravarti, Indian ambassador to Indonesia, said that during Mr. Modi's visit to Indonesia from the 6th to the 8th of this month, there will be several new areas of cooperation that will open up between the two countries. Renowned Pandwani singer of Chhattisgarh and Padma Vibhushan awardee Tijan Bai passed away early this morning. She had been suffering from a prolonged illness and was undergoing treatment at AIIMS Raipur. With a powerful voice, compelling stage presence and distinctive style of narration, Tijan Bai gave Pandwani a new identity not only across India but also internationally. Her remarkable ability to bring the stories of the Mahabharata to life on stage made her one of the most celebrated exponents of Indian folk culture. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the demise of the renowned Pandwani singer Tijan Bai. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh will be leading the Indian delegation to Geneva, Switzerland from tomorrow to participate in the inaugural United Nations Global Dialogue on AI Governance. The annual Shri Amarnath Yatra has witnessed an encouraging start this year with more than 32,000 devotees offering prayers at the Holy Cave Shrine during the first 2 days of the pilgrimage. On the second day of the Yatra, more than 20,000 pilgrims performed darshan at the revered cave shrine, registering a notable increase over more than 14,000 devotees who visited the shrine on the corresponding second day last year. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Kutch, Konkan, Goa, Central Maharashtra and Odisha today. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day. In the Grand Chess Tour in Croatia, Grandmaster R. Pragyananda slipped to the fourth place after a disappointing start of the Blitz section. And that is the end of this news bulletin.
2: मीडियम वेव 284.9 मीटर यानी 1053 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम।

जय हिंद फौजी भाइयों, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आए कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है थ्री इडियट फिल्म से, शान और शांतनु मोइत्रा की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा गया है स्वानंद किरकिरे और संगीत से सवारा है शांतनु मोइत्रा।

अगला गीत हम सुनवाते हैं आजा नचले फिल्म से, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीतकार है जयदीप सानी और संगीतकार है सचिन सुलेमान।

शुश फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में इस गीत को लिखा गया है और संगीत से संवारा है अनु मलिक।

ये फिल्मी गीत आप आकाशवाणी ले से सुन रहे हैं। अगला गीत हम सुनवाते हैं तारा रमपम फिल्म से, श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीतकार है विशाल शेखर।

अंत में आइए आप सुनते हैं लुटेरा फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज़ों में। गीतकार है अमित त्रिवेदी और संगीतकार है अमित त्रिवेदी।

इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए इस वक्त का कार्यक्रम समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद। Dagsangi jarae filme lurik sanazats ngaji akashwani lene jinjik tai nyeme chuto chiktans karma ngap chu chadu kasata akashwani dilini urdina nasul media news tang dopher samachar sanazat.

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। सरकार ने आबनाए हुरमुस के रास्ते रकीक कुदरती गैस एलएनजी की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपये की इमदाद जारी की है। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तिहारात हटाए जाएं। सरकार ने 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ की नामवर पंडवानी गुलुकारा तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने उनकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उड़ीसा में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। और ख्वातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने मगरबी एशिया महाजाराई में जंगबंदी के तनाजुर में अबनाए हुरमुज के रास्ते रकीक कुदरती गैस एलएनजी की खेप का सिलसिला फिर शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। एक नोटिफिकेशन में पेट्रोलियम और कुदरती गैस महकमे की वजारत ने कहा है कि कुदरती गैस की सप्लाई से मुतालिक इंजिबाती ऑर्डर 2026 में तरमीम की गई है, जिसके तहत उन अहम इमरजेंसी दफात को हटा दिया गया है जिनकी रूह से सरकार को अंदरून मुल्क तैयार करदा कुदरती गैस और दरामद की गई

0: एलएनजी अलॉट करने को तरजीह हासिल थी। अब नए हुरमुज के रास्ते एलएनजी की खेप में रुकावट पड़ने के बाद इस साल मार्च में लाजमी अशिया से मुतालिक एक्ट के तहत ये इमरजेंसी ऑर्डर जारी किया गया था। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी रामजी एक्ट 2025 इस महीने की पहली तारीख से नाफिज हो गया है। वजीर मौसूफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजकूरा मिशन के तहत रियासतों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की इमदाद मंजूर की और इसे जारी किया। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी स्कीम एमजी नरेगा की जगह विकसित भारत जी रामजी एक्ट को कामयाबी के साथ इख्तियार किया गया है। उन्होंने कहा कि एमजी नरेगा पर अमल दरामद में 3 साल लग गए थे, जबकि विकसित भारत जी रामजी एक्ट पूरे मुल्क में सिर्फ 1 दिन में ही नाफिज कर दिया गया। जनाब चौहान ने कहा कि इस एक्ट के तहत अगले 5 साल के दौरान 2,86,000 पंचायतों में 7.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सरमाया लगाया जाएगा ताकि विकसित भारत के नजरिए की रफ्तार में तेजी लाई जा सके।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया का दौरा कल से शुरू हो रहा है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवीत मिलेगी और इश्तराक के नए रास्ते भी खुलेंगे। आज जकार्ता में आकाशवाणी के साथ इंटरव्यू में इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे और ताउन के कई नए शोबे खुलने से ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और दो बड़े मुल्कों के दरमियान इक्तसादी राबते और ज्यादा मजबूत होंगे। जामे कलीदी साझेदारी के बारे में सफीर मौसूफ ने कहा कि इस शराकतदारी के कई सुतून हैं, इनमें से एक दिफा और सिक्योरिटी है, इसके अलावा ताल्लुकात में और ज्यादा इक्तसादी सरगर्मियां भी शामिल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वजारत खारजा ने कहा कि इस दौरे का मकसद भारत और मजकूरा मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना और इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर इश्तिहारात में बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल और ज्यादती से मुतालिक मवाद के सिलसिले में मेटा को सख्त नोटिस जारी किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरकार ने इंस्टाग्राम को ये हुक्म दिया है कि उन सभी इश्तिहारात और मवाद को हटाया जाए जिनके जरिए बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत ने मेटा से 7 दिन के अंदर अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। सरकार इस बात का जायजा ले रही है कि आया मजकूरा प्लेटफॉर्म ने भारत के मुतालिका सेफ्टी रहनुमा उसूलों पर अमल किया है या नहीं। डिजिटल कवानीन के तहत भारत में फहाशी और बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल से वाबस्ता मवाद की तकसीम एक फौजदारी जुर्म है। इससे कबल वजारत ने इन इत्तलात का नोटिस लिया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा काबिल एतराज मवाद दिखाया गया है जिससे बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को बढ़ावा मिलता है। सरकार ने मेटा से जवाब तलब करने के लिए मुतालिका अहलकारों को हिदायत भी जारी की थी। छत्तीसगढ़ के मारूफ पंडवानी गुलुकारा और पद्म विभूषण से सरफराज तीजन बाई का इंतकाल हो गया है। वो तवील अरसे से बीमार थीं और रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने आज अलसुबह 3:15 के करीब आखिरी सांस ली। अपनी पुरअसर आवाज़, स्टेज पर शानदार कारकर्दगी और गायकी के मुनफरिद अंदाज के सबब तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ पूरे भारत बल्कि बैन अलाक़्वामी सतह पर भी एक नई शनाख्त दी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाईं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VBG रामजी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
4: सिग्निफिकेंस इज इमेंस।
3: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
4: Greater economic engagement between these two large countries.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक AI संवाद में AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो AI की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
6: दिन दिन वो मारे ढाला पे है, तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। जनबाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
7: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
8: जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया सेना ले ले चला। सावन में
6: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ. तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की

0: मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Medium wave kilo hertz chikston apchung ang sumiyang na meters pan ibig kaya chuk yapsi tang chuzur ko yang FM megahertz kaya nang chiktang chuzur chiktok ne ngayon akash mani line yun chiktain ni may chuzur ni istang pechado kasi ta chuzur ni istang skarma ng apchung ang tupa la dagselurik sanjes la pulen sa may sanskula standin namyale salkane ilubos sanasad

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचावकर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।

आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरे नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट सेरिंग कुंचो और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं फौजी भाइयों का पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम फिल्म मैगजीन। श्रोताओं, हमेशा की तरह आज के फिल्म मैगजीन कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे बॉलीवुड सिनेमा के एक जाने माने हस्ती की फिल्मी सफर पर और सुनेंगे कुछ सुपरहिट बॉलीवुड सॉन्ग्स।

0: पास।
1: श्रोताओं, फिल्म निर्देशक यानी फिल्म डायरेक्टर के लिए अपना पहला कट देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई महीने बीत चुके होते हैं और अपने अपने एडिटर पर पूरा भरोसा किया होता है। आप अपनी पहली फिल्म को पहली बार बनाते हुए देखने वाले होते हैं। आप उसे देखते हैं और कहते हैं, यह तो बहुत बुरा है, मुझे इससे नफरत है। और एक फिल्म डायरेक्टर का 65% हिस्सा कास्टिंग पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज की फिल्म मैगजीन कार्यक्रम के अंश में हम रोशनी डालने जा रहे हैं बॉलीवुड डायरेक्टर व प्रोड्यूसर राजकुमार हिरानी जी की बॉलीवुड सफर पर।

यूं तो राजकुमार हिरानी जी का जन्म 20 नवंबर सन 1962 में नागपुर महाराष्ट्र में एक सिंधी फैमिली में हुआ, परंतु इनके पूर्वजों का ताल्लुक सिंध पाकिस्तान से है। इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई कॉमर्स में की। इनके पेरेंट्स इन्हें इंजीनियरिंग करवाना चाहते थे, परंतु इन्हें असली रुचि थिएटर व फिल्मों में थी। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ थिएटर भी किया करते थे और फिल्म एडिटिंग का काम भी शुरू किया। राजकुमार जी ने अपने बॉलीवुड सफर की शुरुआत डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा संग सन 1994 में रिलीज हुई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के साथ की। इन्हें फिल्म को एडिट करने का पहला मौका सन 2000 में फिल्म मिशन कश्मीर से मिला, परंतु इन्होंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की सन 2003 में रिलीज हुई फिल्म कॉमेडी ड्रामा फिल्म मुन्ना भाई MBBS। फिल्म इतनी सक्सेसफुल रही कि इन्हें अपनी पहली फिल्म के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर अ बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर अ बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स की अवार्ड से नवाजा गया। अपनी पहली फिल्म के सक्सेस के बाद सन 2006 में लगे रहो मुन्ना भाई भी बनाई और यह फिल्म उस साल की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही। फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर अ बेस्ट स्टोरी एंड द बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला और राजकुमार हिरानी जी को लगातार दूसरी बार नेशनल फिल्म अवार्ड का पुरस्कार मिला। बॉलीवुड की खबरों के माने तो जल्द ही मुन्ना भाई 3 भी वहाँ बनाने जा रहे हैं। क्यों ना इसी भी सुनते हैं कार्यक्रम का यह अगला गाना इसी फिल्म से सुखविंदर सिंह व श्रेया घोषाल की आवाज़ों में।

श्रोताओं, फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी बॉलीवुड फिल्म जगत के उन चुनिंदा डायरेक्टरों में से एक है जिन्होंने कुछ ही फिल्में बनाई, परंतु इनकी हर एक फिल्म एक दूसरी फिल्मों से हट कर रही और समाज को कुछ न कुछ मैसेज देती है। ऐसे ही इनकी एक फिल्म रिलीज हुई सन 2009 में, थ्री इडियट्स। चेतन भगत की नॉवल फाइव पॉइंट्स समवन से प्रेरित इस फिल्म में आमिर खान, करीना कपूर, आर माधवन, शर्मन जोशी व बोमन ईरानी दिखे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 4.60 बिलियन के साथ एक शानदार रिकॉर्ड के साथ देश विदेश में भारत की सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही। इस फिल्म की सफलता ने राजकुमार हिरानी को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों की सूची में पहुंचा दिया। इसके बाद 5 साल के अंतराल के बाद सन 2014 में इनकी फिल्म पीके रिलीज हुई। फिल्म 7 बिलियन की आंकड़ों को पार करने वाली भारत की पहली फिल्म रही। इनकी अगली फिल्म रिलीज हुई एक्टर संजय दत्त की बायोपिक पर आधारित फिल्म संजू। फिल्म सन 2018 की सबसे सक्सेसफुल रही। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर अभी समय हो गया कार्यक्रम के अगले गाने का। लीजिए सुनते हैं उदित नारायण व अलका याग्निक की आवाजों में।

श्रोताओं, आज के फिल्म मैगजीन कार्यक्रम में हम बात कर रहे बॉलीवुड डायरेक्टर राजकुमार हिरानी जी की फिल्मी सफर पर। एक लंबे अंतराल के बाद सन 2023 में इनकी फिल्म डंकी रिलीज हुई। सन 2025 में इन्होंने ट्रोजन के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर भी अपनी दस्तक दे दी। अगर हम बात करें इनकी अपकमिंग फिल्मों की, तो क्रिकेट लीजेंड लाला अमरनाथ की बायोपिक पर यह एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और इस फिल्म में एक्टर आमिर खान एक लीड रोल में नजर आ सकते हैं। सन 2019 में डायरेक्टर राजकुमार हिरानी जी को शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक जूरी के तौर पर नामांकित किए गए। फिर सन 2023 में द सोरेस प्लेटफॉर्म पर एक क्रिएटिव मेंटर फोरा कंटेंट आइडियाज के रूप में भी नजर आए। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, तो राजकुमार हिरानी जी ने सन 1994 में एयर इंडिया पायलट मंजीत के साथ शादी की। वीर हिरानी इनके एक इकलौते सन हैं। क्यों ना इसे भी सुनते हैं कार्यक्रम का यह अगला गाना फिल्म पीके से शान वाशिया घोषाल की आवाजों में।

श्रोताओं, समय की कमी के कारण आज के कार्यक्रम में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। तब तक अपना रखिए ख्याल और इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का यह अगला गाना। जय हिंद।

0: Dar sang ejra e punzor spaldone salkane lurik sanazats. Ngaje akashvani lene junjik tangin. Pido chu zol dun tangskar majib chu charu. Kazata akashvani Srinagar ne urdena nasultang tapsara sanazat.
1: कुछ नहीं अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: पापा लाइए 3,000।
3: क्यों भाई?
2: मेरी पॉकेट मनी।
3: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
2: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। नहीं, हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
3: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
2: अपना मोबाइल लाओ,
3: ले ले।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ دیہی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے بی بی جی رام جی کے لیے 25,000 کروڑ روپے کی پہلی قسط کو دی منظوری۔ شری امرناتھ جی یاترا شدھ مت سے جاری، آج 24,000 سے زائد یاتریوں نے کیے شیولنگم کے درشن۔ لیفٹنٹ گورنر کا نومن اور چندنواری کا دورہ، شری امرناتھ جی یاترا کی انتظامات کا لیا جائزہ۔ اور بھارت کے نوجوان مصنوعی ذہانت روبوٹکس کے انقلاب پہ کریں گے عالمی انقلاب کی قیادت وزیر اعظم۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ملک میں وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ ایجوکا مشن یعنی وی بی جی رام جی کے نفاذ کے لیے پہلی قسط کے طور ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے 25,863 کروڑ روپے کی پہلی قسط منظور کی ہے۔ وزیر موصوف نے پہلی قسط کی یہ منظوری آج ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی دیہی ترقی کی وزارتوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایک میٹنگ کے دوران دی، جس میں دیہی ترقی کی فلیگ شپ روزگار اسکیموں کا جائزہ لیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ ملک میں وی بی جی رام جی یکم جولائی سے عمل میں لائی گئی ہے، جو اس سے پہلے ایم جی نریگا کے نام سے جانی جاتی تھی۔ وزیر نے کہا کہ جہاں منریگا اسکیم کو ملک میں لاگو کرنے میں 3 سال کا طویل عرصہ لگا، وہیں وی بی جی رام جی ملک بھر میں صرف ایک ہی دن میں لاگو کی گئی، جس سے وزیر اعظم نریندر مودی کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔
1: منریگا کو پورے دیش میں لاگو کرنے میں 3 سال لگے تھے، لیکن مجھے آپ سب پر گرو ہے، 1 سال 2 سال نہیں، پہلے دن ہی وکست بھارت جی رام جی یوجنا ایک ساتھ پورے دیش میں لاگو ہو گئی۔ 100 دن نہیں، اب 125 دن روزگار، 5 سال میں 7.5 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی راشی، 2,86,000 پنچایتوں میں ٹھیک سے لگ گئی، تو گاؤں سمپورن وکست ہو جائیں گے، سمردھ اور وکست گاؤں کا نرمان ہو جائے گا۔
0: سالانہ شری امرناتھ یاترا شدھ مت سے جاری ہے، یاتروں کی تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ آج یاترا کے تیسرے دن شام 7 بجے تک 24,648 یاتریوں نے گفا پر حاضری دے کر شیولنگم کے درشن کیے۔ یہ یاترا کے پہلے 3 دنوں کے دوران ایک دن میں درشن کرنے والے شردھالوؤں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس طرح اب تک درشن کرنے والے یاتروں کی کل تعداد تقریباً 56,000 ہو گئی ہے۔ جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے آج صبح 6,721 یاتری وادی کے لیے روانہ ہوئے۔ انتظامیہ نے شردھالوؤں کی سہولت کے لیے سیکورٹی سمیت سبھی انتظام بھرم رکھے ہیں۔ اس سلسلے میں یاتریوں نے نیوز روم کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: ہم مہاراشٹر سے آئے، آ کر یہاں پر لنگر میں ہم کو اچھی ویوستھا ملی، کھانا پینا کی ویوستھا بہت بہت سندر ہے، بہت اچھی ہے، اور یہاں پر جو سیوے کری ہے وہ بہت اچھے لگے، بڑے پیار سے ہم سے آئے، اور ہم 6 یاتری ہیں اور ہمارا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں، بہت اچھا ہے، اور ہم کو بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر اور ان کے لنگر کا کھانا کھا کر۔
3: میرا نام پون کمار شرما، سبزی منڈی گھنٹہ گھر دلی ساتھ، بالٹال سے گفا تک سفر بہت بڑھیا رہا، بہت بڑی اچھی سویدھا تھی، جس کی سویدھا کے کارن ہم بابا کے دربار کے بالکل کنارے کھڑے ہیں، آپ کے سویدھا کے کارن ہی بابا کے درشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
0: اس بیچ جموں کشمیر پولیس نے خصوصی ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ غیر رجسٹر شدہ کسی بھی یاتری کو سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے لیے سری نگر کی جانب جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ سری نگر جانے والے رجسٹرڈ یاتریوں اور سیاحوں سے کہا گیا ہے کہ وہ پولیس چیک پوائنٹوں پر کاغذات کی جانچ کے لیے یاترا رجسٹریشن سلپ اور ہوٹل بکنگ رسید ساتھ رکھیں۔ ادھر پولیس یاترا کے دوران شردھالوؤں کو ہر ممکن مدد فراہم کر رہی ہے، تاکہ یاتریوں کی محفوظ نقل و حمل کو یقینی بنایا جا سکے۔ سری نگر پولیس نے سیکیورٹی اور ٹریفک مینجمنٹ کے مناسب انتظامات کیے ہیں۔ ضلع میں یاتریوں کی راستوں پر پولیس اہلکاروں کی مناسب تعداد کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ شری امرناتھ جی یاترا کے بیس کیمپ کا دورہ کیا اور وہاں یاترا کی نظامت اور شردھالوؤں کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ انتظامیہ کے افسران کے ساتھ ایک میٹنگ میں انہوں نے یاتریوں کی نقل و حمل، سلامتی انتظامات، اقامتی سہولیات، رجسٹریشن، امن اور یاترا سے جڑے دیگر امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ لیفٹنٹ گورنر نے چندنواڑی کا بھی دورہ کیا اور وہاں بھی یاترا کے احسن انعقاد کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے یاترا کے احسن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ ایل جی نے کئی یاتریوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے یاترا سے متعلق ان کے مشاہدات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ بعد میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
4: چار یاتراؤں کو بڑی نزدیک سے میں نے دیکھا، شردھالوؤں کی سنکھیا میں بھاری وردھی تھی، بنا پنجیکرن کرائے بنا رجسٹریشن کے بھی بڑی سنکھیا میں لوگ آ رہے ہیں۔ جموں کشمیر پرسا प्रशासन ने श्राइन बोर्ड में मिलकर के इंतजाम पहले से भी बेहतर किए हैं। मेरा अनुरोध होगा सभी श्रद्धालुओं से कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपने बारी का इंतजार करें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार चंदनबाड़ी से भी और बालटाल से भी श्रद्धालुओं को भेजने की संख्या सीमित है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो मेरा आग्रह होगा कि जो व्यवस्था बनाई जा रही है उस व्यवस्था का स्वरूप पालन करें।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की नौजवान मसनूई जहानत रोबोटिक्स और मुल्क में तैयार किए गए सेमी कंडक्टरों का इस्तेमाल करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी में आलमी इंकलाब की कयादत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गुजरात में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट यानी ओएसएटी की इफ्तिताही तकरीब पर इजहार ख्याल कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये मोक और ये प्रोजेक्ट डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के दो सतूनों के जरिए भारत को जदीद टेक्नोलॉजी का आलमी मरकज बनाने के नजरिए में एक संगमेल की नुमाइंदगी करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को तकवीत मिलने और इश्तराक के नए रास्ते खोलने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वज़ीर खारजा डॉक्टर एच जय शंकर आज से 10 जुलाई तक कतर बहरीन कुवैत और ओमान के सरकारी दौरे पर रहेंगे। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। पार्लियामेंटी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार की सिफारिश पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मानसून इजलास के इनका की मंजूरी दी है। वादी के सयाती मुकामात पर इन दिनों लोगों का गैर मामूली रश देखा जा रहा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ ही मुल्की और गैर मुल्की सैलानियों के साथ साथ मुकामी लोग भी बड़ी तादाद में गुलमर्ग कोकरनाग वीरीनाग मुगलबागात यूसमर्ग दूधपत्री और दीगर सयाती मुकामात का रुख कर रहे हैं ताकि सूरज की तमाजत से छुटकारा पाया जा सके। मुकामी लोग वादी के दूर दराज और गैर मारूफ सयाती मुकामात की सैर करने में काफी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। कश्मीर सूबे की पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 14 दिन की गर्माई तातीलात के लिए कल यानी 6 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक बंद रहेंगे। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक स्कूल दोबारा 20 जुलाई पीर को खुलेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नौजवान तबके में मनुष्यात के इस्तेमाल के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया है। सोरो में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इस बिदत के खात्मे के लिए समाज के हर तबके के एकजुट होने की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरान श्रीनगर में पार्टी के एक इजलास के दौरान मरहूमा बेगम अकबर जहां की बरसी के सिलसिले में 11 जुलाई को मुनाकद होने वाली तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी गई है। बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना की सदारत में आज जम्मू में पार्टी लीडरों की एक मीटिंग मुनाकात हुई। मीटिंग के दौरान पार्टी के कौमी सदर के जम्मू दौरे के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर गुलाम अली खटाना ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की जामे तरक्की की वादाबंद है। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन कल से शुरू होने वाले जम्मू के अपने दो रोजा दौरे के दौरान मिश्रीवाला में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डोगरा चौक में पंडित प्रेमनाथ डोगरा को खराज अकीदत अदा करेंगे। इस बात की जानकारी पार्टी के प्रदेश सदर सत शर्मा ने दी। उन्होंने आज जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर सिलसिलावार मीटिंगों के दौरान इस दौरे के लिए किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस दौरान पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा ने सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरियों में मुतनाजिया किताबों को शामिल किए जाने की मजम्मत की है। जियारत बाबा हनीफुद्दीन रहमतुल्लाह अला रटसन बीरू में आज मौलूद मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तकरीब मुनक़द हुई जिसकी सरबराही मौलाना गुलाम मुहैद्दीन नकीब ने की। मजलिस में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना मौसूफ ने सीरत पाक के मुख्तलिफ गोशों को बयान किया। अरबी मरकज कमराज के अहतमाम से आज हायगाम सोपोर के इमाम बारगा जैनबिया में एक हुसैनी मजलिस मुनाकात हुई। मजलिस की सदारत मारूफ अदीब शहनाज रशीद ने की। इस मौके पर मरकज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट के अलावा दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। मजलिस के दौरान शुरा ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला के शहदा के तई मंजूम नजराना अकीदत पेश किया। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक्तिसादी जराइम से मुतालिक विंग ने बैंक में लाखों रुपए फ्रॉड मामले में फर्दी जुर्म दाखिल कर दी है। इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज में क्राइम ब्रांच ने कहा कि ये चार्जशीट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में दाखिल की गई है, जिसमें गलत तरीके से कर्ज हासिल करने की पादाश में कई अफराद के नाम दर्ज हैं। मालूम हुआ कि कसूरवार अफराद ने जाली दस्तावेजात पेश करके साल 2007 में जम्मू कश्मीर बैंक की रेजिडेंसी रोड की शाख से 30 लाख रुपए का सीसी कर्जा और जैनकोट शाख से मजीद 30 लाख रुपए का टर्म लोन हासिल किया था। जम्मू कश्मीर में 100 रोजा नशा मुक्त अभियान के तहत मुख्तलिफ सतहों पर मनुष्यत मुखालिफ कार्रवाइयां जारी हैं। पुलिस ने बारामुल्ला में पलहालन पट्टन के रहने वाले मुश्ताक अहमद डार नामी एक ड्रग स्मगलर की 29 लाख रुपए मालियत की जायदाद अटैच की है। जिला के कई इलाकों में भांग की काश्त को तबाह कर दिया गया है। पुलिस के अहतमाम से टंगपुरा बारामुल्ला में मनुष्यत के मुजिर असरात से मुतलिक एक बेदरी प्रोग्राम मुनाकद किया गया। करगिल विजय दिवस की मुनासबत से द्रास में करगिल वार मेमोरियल पर सरहद शौर्य थान 2026 का इनेकाद किया गया। करगिल से हमारे नुमाइंदे इनायत अली ने खबर दी है कि इस तकरीब पर पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि महाराष्ट्र के वजीर ममलिकत योगेश कदम के अलावा लद्दाख के पार्लियामेंट मेंबर हाजी हनीफा जान और दीगर कई शख्सियात ने भी अफ्तताही तकरीबात में शिरकत की। शौर्य थान में 3000 से जायद अफराद ने शिरकत की। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामिनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में लाखों लोगों ने शिरकत की। शिरकत करने वालों में कई गैर मुल्की सरबराहान और आला सरकारी ओहदेदारान भी शामिल थे। मरहूम की आखिरी रसूमात में भारत के एक वफद ने भी शिरकत की। वादी के एक नामवर शायर और अदीब रशीद राशिद का इंतकाल हो गया है। उनके इंतकाल पर वादी के कई अदबी तंजीमों और शख्सियात ने दुख का इजहार किया है। एआर आजाद मेमोरियल फाउंडेशन ने उनके इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए मरहूम के लवाहकीन के साथ हमदर्दी जाहिर की है। मगरबी एशिया में तनाजे के खात्मे और जंगबंदी के बाद आबनाए हुरमुज के रास्ते लिक्विफील्ड नेचुरल गैस की तरसील दोबारा शुरू होने पर सरकार ने कुदरती गैस की फराहमी पर आए हंगामी पाबंदियां खत्म कर दी है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि कुदरती गैस सप्लाई रेगुलेशन ऑर्डर 2026 में तरमीम की गई है। इस तरमीम के तहत वो हंगामी दफात खत्म की गई हैं, जिनके जरिए सरकार को मुल्क में पैदा होने वाली कुदरती गैस और तरामदशुदा एलएनजी की तरजीही बुनियादों पर तकसीम और मुख्तस करने का इख्तियार हासिल है। हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर जारी किए जा रहे बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल और बदसलूकी के मवाद पर मीटा को सख्त नोटिस जारी कर दिया है। सरकारी जराये के मुताबिक हुकूमत ने इंस्टाग्राम को हिदायत दी है कि वो इस किस्म के तमाम इश्तहारात और मवाद तक रसाई को फौरी तौर गैर फाल बना दे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने 7 दिन के अंदर अहकाम पर अमल दरामद से मुतलिक तफसील तलब की है। खवातीन की आईसीसी टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज को हराकर फाइनल में पहुंची है, जबकि इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी और लगातार छठी कामयाबी हासिल की थी। और अब खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नजर। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर सूबे में कहीं कहीं पर हल्की बारिश और जम्मू सूबे के अक्सर मुकाम पर दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36.4 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुल्य आफ्ताब सुबह 5:25 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। उसके साथ ही खबरनामा खत्म हो। खुदा हाफिज।
5: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
6: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
5: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
6: तो फिर सही नंबर,
5: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
6: आपने तो बचा लिया दीदी।
5: काम से नहीं।

0: आरबीआई कहता है,
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
2: आदाब, आज का तबसिरा लेकर मैं मुबशिर रुफाई। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक मजहबी सफर नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तहजीबी हम आहंगी, कौमी यकजहती, बाहमी एहतराम और खिदमत खलक की रोशन रिवायत का एक मौसर मजहर है। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन की गरज से दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों का सफर तय करते हैं और श्रद्धा, ईसार और रूहानी वाबस्तगी का अमली सबूत पेश करते हैं। इस साल यात्रा के आगाज के मौके पर यात्रियों में वजीर अजम नरेंद्र मोदी का खसूसी पैगाम तकसीम किया जाना इस अमर की अक्कासी करता है कि हुकूमत इस अजीम मजहबी इज्तिमा को न सिर्फ एक रूहानी तकरीब बल्कि कौमी यकजहती, सकाफती हम आहंगी और अवामी शमूलियत के एक अहम मौके के तौर पर भी देखती है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने अपने पैगाम में श्री अमरनाथ जी यात्रा को हिंदुस्तान के रूहानी वरसे और कसरत में वहदत की जिंदा मिसाल करार दिया है। हकीकत भी यही है कि इस यात्रा में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों, जबानों, सकाफतों और रिवायात से ताल्लुक रखने वाले श्रद्धालु शरीक होते हैं। ये इज्तिमा इस हकीकत को मजीद मुस्तहकम करता है कि हिंदुस्तान की असल ताकत इसकी गुनागुन सकाफतों के बाहमी एहतराम और कौमी यकजहती में मुजमिर है। वजीर अजम ने अपने पैगाम में सिर्फ मजहबी पहलुओं पर ही जोर नहीं दिया है बल्कि यात्रियों को जिम्मेदार शहरी होने का एहसास भी दिलाया है। सफाई, माहौलियाती तहफ्फुज, हिफाजती असूलों की पाबंदी और मकामी मईशत की हिमायत की तामीर में फाल किरदार जैसे निकात इस बात की निशानदेही करते हैं कि मजहबी सरगर्मियाँ समाजी जिम्मेदारियों से अलग नहीं है। खसूसन वोकल फॉर लोकल के जज्बे के तहत यात्रियों से अखराजात का कम अज कम 10% मकामी मसनूआत की खरीदारी पर खर्च करने की अपील एक मस्बत और दूर सोच की अक्कास है जिससे मकामी दस्तकारों, ताजरों और छोटे कारोबारी तबके को बराह रास्त फायदा पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर की मईशत में आम सियाहत और मजहबी सियाहत को हमेशा एक अहम मकाम हासिल रहा है। यही वजह है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात पर जोर दिया है कि यात्रियों को मकामी बाजारों और दीगर मकाम का दौरा करने की इजाजत मिलनी चाहिए ताकि वो मकामी अशिया खरीद सकें और इस तरह कश्मीर की मईशत को मजीद तकवीत हासिल हो। उनका ये मौकिफ वजीर अजम की अपील से मुकम्मल तौर हम आहंग है। ये हकीकत काबिले गौर है कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने हमेशा अमरनाथ यात्रा के दौरान अपनी रिवायती मेहमान नवाजी का शानदार मुजाहिरा किया है। मुख्तलिफ इलाकों में मकामी बाशिंदे जरूरी सहूलियात फराहम करके बेलौस खिदमत की मिसाल कायम करते हैं। ये खिदमत मजहबी हम आहंगी और इंसान दोस्ती के जज्बे को फरोग देती है। यही वो अकदार है जिन्हें वजीर अजम ने हिंदुस्तान की तहजीबी रिवायत और सभी खुश रहें के कदीम तस्वुर की अमली ताबीर करार दिया है। मकामी कारोबारी तबके की ये ख्वाहिश भी नहायत फित्री है कि यात्रियों को दर्शन से कबल या बाद में मकामी बाजारों का दौरा करने का मौका फराहम किया जाना चाहिए। अगर इस जिम्मे में मुनासिब मनसूबाबंदी की जाए तो न सिर्फ मकामी तिजारत को फरोग मिलेगा बल्कि यात्री भी कश्मीर की सकाफत, रिवायती दस्तकारी, मकामी मसनूआत और अवामी मेहमान नवाजी से करीब से आशना हो सकेंगे। इस अमल से मजहबी सियाहत को माशी तरक्की के साथ जोड़ने की एक मौसर मिसाल कायम की जा सकती है। इसी तरह माहौलियात के तहफ्फुज़ से मुतलिक वजीर अजम की अपील भी वक्त की अहम जरूरत है। हिमालयाई खत्ता माहौलियाती लिहाज से निहायत हसास है, इसलिए सफाई, प्लास्टिक के कम इस्तेमाल जैसे इकदामात इंतहाई अहमियत रखते हैं। अमरनाथ यात्रा दरअसल अकीदत, कौमी यकजहती, खिदमत खल्क, समाजी जिम्मेदारी और इक्तिसादी तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं को एक साथ जोड़ने वाला एक मौका है। इसकी कामयाबी हुकूमत, सिक्योरिटी इदारों, मकामी आबादी और खुद यात्रियों के बाहमी तआवुन से मुमकिन होती है। अगर मजहबी अकीदत के साथ सफाई, माहौलियात के तहफ्फुज, मकामी मईशत की मजबूती, कानून की पासदारी और कौमी यकजहती जैसे मकासद को भी पेश नजर रखा जाए तो अमरनाथ यात्रा एक रूहानी तजुर्बे के साथ साथ कौमी तामीर, समाजी हम आहंगी और जम्मू कश्मीर की पायदार माशी तरक्की का एक मौसर जरिया भी साबित हो सकती है। तबसरा खत्म हुआ, शब बखैर।
3: आकाशवाणी लेने डिग्रीम पुलकन ये सुलटिम तरचिन।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार

0: विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरौली, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जल स्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदे ईदा के पास हुआ जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
5: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले तीन दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
6: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्तानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।